मस्त खुदाई अरे मन वाचान दूर वजदास्तार जत शिकस्ते बाद अरे मन देवाम दरू जान जादुआन दरवंदान की कान करफान सास्तारान गुनेगरान अश्मोगान दरवंदान दुश्मन फ्रियान जत शिकस्ते बाद दुष्पाचान वाचान बाद दुश्मन सतो बाद दुश्मन वाचान बाद और मज़द खदाई अजम गुना पतित पशेमानुम अजवरस्तीन दुश्म